पहला सागर मह बूंद, बूंद मह सागर, कमन बुझै बिद जाने। उत्पुज चलत आप कर चीनै, उत्पुज चलत आप कर चीनै, आपे तत पछाणे। ऐसा ज्ञान बिचारै कोई, तिस्ते मुक्त परम गत होई रहाओ। दिन मह रैन रैन मह दिनियर, उसन सीत बिद सोई, ताकि

अचर्ज पुरख त्याओ रहाव। उठत बैठत हर जाप, बिनसै सगल संताप। बैरी सब होव हमीत, निर्मल तेरा होवै चीत। सब ते उत्तम इहो करम, सगल धर्म मह श्रेष्ठ धर्म।

निंदा कर कर बहुत विगूता गर्भ जोन मह किरत पया पुरब कमाणे छोडह नाही जम दूत ग्रास्यो महा पया बोलै झूठ कमावै अवरा तृष्ण ना बूझै बहुत हया असाध रोग उपजया संत दूखन दे विनासी महा खया।

बिन नरक गया, खिन महवेश करह नटुआ ज्यों, मोह पाप महंगलत गया। इत उत माया देख पसारी, मोह माया कै मगन भया, करह विकार विथार कन्हेरे।

गुरमुख केती शब्द उधारी संत हो रहाओ। ममता मार हों मैं सुख है त्रिभवन जोत तुम्हारी, मनसा मार मने मह राखै सतगुर शब्द।

जे कुटंब छोड़ पर पवन करहें, ग्रह शरीर मह हर हर नाम, गुर प्रसादी अपना हर प्रबल है।

आई। पूजा करे सब लोक संत हो, मन मुख थाए ना पाई। शब्द मरे मन निर्मल संत हो, ए पूजा थाए पाई।

संत हो, सतगुर खेप निवाही संत हो, हर नाम लाहा दास कौ दिया, सगली त्रिशन उलाही संत हो। रहाउ।

राम रमा कंठ उर धारियै उर धार हर हर पुरख पूरन पार ब्रह्म निरंजनो भय दूर करता पाप हरता दुसह दुख भव खंडनो।

अनंत तरह नाम नरहर निदान जिनकै रस भोग एक नारायणा रस रूप रंग अनंत बीठल सास सास त्यायणा।

कस कसवटी सह सोताओ नदर सराफ वन्नी चढ़ाओ जगत पशु अहंकाल कसाई कर करतै करणी कर पाई जिनकी

पूरम। देह देह आख सब कोई जप हवै तदे, गुरु द्वारे देवसी तिखा निवारे सोए, टंडोलत ढूंढत हों फिरी।

विचारो दर्शन पेख करहो जोगिंद्रा मुंद्रा चोली खिंथा बार है अंतर एक सरे बहो खट दर्शन एक पंथा इन विद मन समझाइए पुरखा बाहुड़ चोट ना खाइए नानक बोले गुरमुख।

कारण इहो भेख निवासी किस वखर के तुम वणजारे क्यों कर साथ लंघावहो पारे। गुरमुख खोजत भए उदासी दर्शन कै ताई भेख निवासी साच वखर।

बैरागी साच रखिया और तहरे नानक बिन नावे जोग कदे ना होवे देखो हृदय बिचारे।

सुख नारद बचन सब सृष्ट करेन सच्चै लाए सच लगे सदा सच संभालेन नानक आए से परवान पए नानक आए से परवान पए जे सगले कुल तारेन महला तीजा

आपे श्रेष्ठ आपे श्रेष्ठ सा जियन आप गुप्त रखे सा गुर सेवा ते जाने सच प्रगटिए सा सब किस सचो सच है।

पौड़ी। मनमुख मोह गुबार है, दूजै भाए बोलै, दूजै भाए सदा दुख है, नित नीर विरोलै। गुरमुख नाम ते आई है, माथ तत कढ़ोलै, अंतर प्रगा

पाठी पियो महारस पारी। काम क्रोध द्वय किए जलेता छूट गई संसारी।

हर हार हर उतारियो, जन नानक नाम समाया। माली गौड़ा महला चौथा, जप मन राम नाम सुखदाता। सतसंगत मिल हर साध आया, गुरमुख ब्रह्म पछाता रहा।

था। सब सिद्ध साधक मुन जना मन भावनी हर त्यायो अपरंपर पार ब्रह्म स्वामी हर अलख गुरु लखायो रहाओ हर अलख।

0: सुख है।
1: गुर सेवा सदा सुख है, जिसनो हुक्म मनाए। सोयना रूपा सब तात है, माटी रल जाई। बिन नावै नाल न चली, सतगुर

जिह कर्म है तुद रहना बसना सो कर चीत ना आयो। अटल अखंड प्राण सुखदाई एक निमख नहीं तुझ गायो। जहां जाना सो थान विसारियो एक निमख नहीं मन लायो। पुत्र कलत्र ग्रह देख समग्री इस ही मह उर्जायो।

बिन हर गुर किन पत पाई हे। कली काल मह एक कल राखी, बिन गुर पूरे किने ना पाखी। मन मुख कूड़ वरतै वरतारा, बिन सतगुर

जय दूजै भरम भुलाई हे गुरमुख जाग रहे दिन राती साचे की लेव गुरमत जाती।

सुख दुख ही तय अमर अतीता गुरमुख निज कर पाएंदा श्याम वेद रिग जुजुर अथर्वण।

गुर बिन मूख मुक्त क्यों पाई, बिन गुर राम नाम क्यों त्याई है। गुरमत ले हो तरहो पवद उत्तर, मुक्त पहे सुख पाया। गुरमत कृष्ण गोवर्धन थारे, गुरमत सायर पाहन तारे। गुरमत लेहो परम पद पाई, नानक गुर परम चुकाया। गुरमत ले

निर्मल शब्द कमाया, अदृष्टिय गोचर नाम अपारा, अतरस मीठा नाम प्यारा, नानक कौ जुग जुग।

भगत हेत गुर शब्द तरंगा, हर जस नाम पदार्थ मंगा। हर पावै गुर मेल मिलाए, हर तारे जगत सबाया। जिन जप

भवजल जगत शब्द गुर तरियै अंतर की दुविधा अंतर जरियै पंच बाण ले जम कौ मारै गगन अंतर तनख चढ़ाया साकत नर शब्द सुरत क्यों पाइय शब्द सुर

मन हाथी। पाखंड धर्म प्रीत नहीं हर स्यों, पाखंड धर्म प्रीत नहीं हर सों। गुर शब्द महारस पाया, कुदरत देख रहे मन मानिया, गुर शब्दी सब

नवनज नाम बसया कट अंतर छोड़िया माया काला हाहे। रैयत राजे दुर्मत दोई बिन सतगुर सेवे एक ना होई एक ते आयन

बनाई। गुरमुख होवै सो काया सो धै, आप है आप मिलाएं दार। काया विच तोटा काया विच लाह,

सहजे गुण रह दिन राती ज्योति ज्योत मिलाया। काया बिरख पंखी विच वासा अमृत जुग है गुरु शब्द निवासा। उठ है ना मूले ना आव है ना जाही निज घर वासा पाया। काया शुद्ध है शब्द विचार है।

गुण निदान मन तन मह रविया, जन्म मरण की जोन ना पभया, दुख विनाश किया सुख डेरा, जहां तृप्त रहे आगाई है।

उपदेश तुट है सब बंधन, यो परम मोह पर जालना। जहरा खै सोई सुख थाना, सहजे होए सोई पलमाना।

खराम शराशरयत ले कम्मा बहो त्रिकत तर्क खोज टोला बहो मारफत मन मार हो अबदाला मिलो हकीकत जित फिर ना मरा कुरान कुतेब दिल माहे कमाही दस औरात रखो बदराही पंच मर्द।

गर्भ अग्न मह जिन्हें उबारिया रक्त किरम मह नहीं संघारिया अपना सिमरन दे प्रतपालिया ओ सगल घटा का मालका चरण कमल शरणाई आया साध संग है हर जस गाया।

हर अगम अगाधा निःचल नाम निदान है जिस सिमरत हर लाधा निःचल कीर्तन गुण गोविंद गुरमुख गावाधा।

ਤੂੰ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਭਰਪੂਰ ਸਭ ਉਪਰ ਸਾਚ ਧਨੀ ਜਿਨ ਜਪਿਆ ਹਰ ਮਨ ਚੀਤ ਹਰ ਜਪ ਜਪ।

बिन कबहु न छूटस बिरथा जन्म भयो रहाओ। तन मह काम क्रोध हौ ममता कठिन पीर अत भारी गुरमुख राम जपहो रस रसना इन विद तार तू तारी। बहरे करन अकल पई होची शब्द सहज नहीं बूझया जन्म पदार्थ मन मुख हारिया।

मुख जाता, से जग मह काहे आया, गुर की सेवा कदे न कीनी, बिरथा जन्म गवाया, नानक से पूरे वड भागी सत।

जाने। दैत पुत्र प्रहलाद गायत्री तर्पण किसु ना जाने, शब्दे मेल मिलाया रहाउ। आन दिन भगत कर है दिन राती, दुविधा शब्दे खोई, सदा निर्मल है जो सच राते, सच बसिया मन सोई, मूर्ख दुविधा।

रहाओ। ठाकुर छोड़ दासी कौ सिमरह मन मुख अंध अज्ञाना हर की भगत करह तिन निंदा है निगुरे पशु समाना जियो पिंड तन धन सब प्रभ का साकत कहते मेरा अहम बुद्ध दुर्मत है मैली बिन गुर भगत।

अंतर वस्त दिसंतर जाए, बाज गुरु है परम पुलाए। जिस मस्तक कर्म लिखिया ललाट, जिस मस्तक

निज घर वासी हम सुख पाया ता सब है सुहेले गुर पूरै पिता संग मेले रहाओ। मंदिर मेरे सब ते ऊचे देश मेरे बेअंत अपूछे राज हमारा सद ही निहचल माल हमारा अखूट अबेचल शोभा मेरी सब जुग अंतर बाज हमारी थान थनंतर कीर्त हमारी।

सुन सहज महे बुनत हमारी, हमरा झगड़ा रहा ना को, पंडित मुल्ला छाडे दो रहा।

कूप गोज खिन काढ़ै, जो ओडा कूप गोज खिन काढ़ै त्यों सतगुर वस्त लहाइय। जिने ऐसा सतगुर साध ना पाया ते त्रिग त्रिग नर जीवाइय। जन्म पदार्थ

खेल तुझ महे समाहे, ज्यों पावे त्यों राख ले, सुख नानक पूरा गुर मिले। बसंत महला पंजवां।

खसमत आया, साध संगत प्रभ कियो निवास, हर जप जप होई पूर्ण आस, जल थल महियल रब रहया, गुरमिल नानक हर हर कहया। अष्ट सिद्ध नव निद ए कर्म प्राप्त जिस नाम दे, प्रभ जप जप जीव है तेरे दास, गुरमिल नानक कमल प्रगास। बसंत महला पंजवां घर पहला, एक तुके एक ओंकार, सतगुर प्रसाद सगल।

मेरा सतगुरु सुख सहज सेती घर जाते हर आपे खेले हर आपे देखे हर आपे रचन रचाया जन नानक गुरमुख जो नर खेले सो जिन बाजी घर आया बसंत महला पंजवां हिंडोल।

भय अभिमान न जाई, लख चौरासी ही जंत उपाय, मेरे ठाकुर भाणे सिरज समाए, सगली भूलै।

तिस अर्पौ सब सुख जाई। एक निमुख प्रैदर्स दिखावे तिस संतन कै बल जाई। करो निहोरा बहुत बेनती सेवों दिन रह नाई। मान अभिमान हो

दहाव। कित है स्थान तू टिकन ना पावहि, ए बिद देखी आखी, ए बिद देखी आखी।

अगम अगोचर अनाथ अजोनी गुरमत एको जानिया सुपार परे नाहीं चित डोले मन ही ते मन मानिया।

नौ तन प्रीत सदा ठाकुर स्यों, अन दिन भगत सुहावी मुक्त भय गुरदर्श दिखाया, जोग जोग भगत सुभावी।

आई तीर्थ अड़सठ मज्जन नाई सतसंगत की तूर परी उड नेत्री सतसंगत की तूर परी उड नेत्री सब दुर्मत मैल गवाई रहा जाहर नवी

हम हाट बिहाजे जिस हर हर कृपा करै हर जन को मिलया सुख पाइये सब दुर्मत मैल हरै हर जन को हर भूख लगानी जन तृप्त है जा हर गुण बिचरै हर का जन हर जल का मीना हर बिसरत फूट मरै जिन एह प्रीत लाई सो जानै कह जानै जिस मन धरै जन

सतगुर हर हर नाम दृढ़ावे, हर बोलहो गुर के सिख मेरे भाई, हर पौ जल जग तरावे रहाओ, जो गुर कहो जन पूजे सेवे, सो जन मेरे हर प्रभ पहावे, हर की सेवा सतगुर पूजहो, कर कृपा आप तरावे, परम भूले।

सुख मोर, ईत ऊत राम पूरन निरखत रिद खोर, संत शरण तरन नानक बिन सो दुख कोर,

ब्रह्म कमल पुत मीन ब्यासा तप तापन पूज करावे गो जो जो भगत होए सो पूजहो परमन परम चुकावे गो जात न जात देख मत परम हो सुख जन